0: ஜனங்களுக்காக, எங்கள் மக்களுக்காக, எங்கள் தேசத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஐயா. நீர் பொறுப்பேற்று வழி நடத்தும்படிக்கு நாங்கள் செபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினால் நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா. என்னுடைய நாட்களில் வியாதியும் வேதனையிலும் தவிக்கிறார்கள் அநேகர். ஆகவே இவர்களுக்குள்ளே ஒரு குணம் உண்டாகும்படி, ஒரு தைரியசாலிகளாய் இவர்கள் வாழ கர்த்தாமே அவர்களுக்குள்ளே ஒரு மாற்றங்கள் வருவதாக என்று சொல்லி சும்மா நீங்க ஜபத்திலே வழி நடத்துங்க.
1: ஆம் ஆண்டவரே, எங்கள் அன்பின் தகப்பனே, சப்பா கர்த்தாவே, இந்த வியாதிப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களுக்காக உம்முடைய பாதத்திலே வருகிறேன் ஆண்டவரே. தந்தையே, நீங்களே பொறுப்படுக்கும்படியாக உம்மிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. பரிசுத்தரே, பொறுப்படுங்கள் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த வியாதிகள் ஆண்டவரே ஒவ்வொருத்தருடைய சரீரத்தை மட்டுமல்ல கர்த்தாவே, ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்தையும் பலவீனப்பட செய்கிறது ஆண்டவரே. அன்பின் தகப்பனே, இப்படிப்பட்ட வியாதி படுக்கையிலே, வைத்திய சாலைகளிலும் வீடுகளிலும் இருந்து வேதனையோடு இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக உங்களுடைய பாதத்தில் வருகிறேன் அப்பா. இப்படிப்பட்டவர்களை நீர் கண்ணோக்கி பாரும் ஆண்டவரே. இவர்களுக்கு ஆண்டவரே உங்களுடைய இரக்கத்தை காண்பியும் ஆண்டவரே. அப்பா, சிறு வியாதியாயிரு
2: Praise the Lord.
3: Praise the Lord, sister. Praise the Lord. எடுத்து வாருங்கள், எடுத்து வாருங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you, sister. God bless you.
2: Thank you, sister. God bless you too. Amen. Amen. இணைந்திருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் யாவருக்கும் கர்த்தராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
4: Amen. Praise the Lord, ma.
2: Praise the Lord, ma.
4: இப்ப தர்சீட டைம் ஆகும், உங்களோட டைம் போயிட்டு தர்சி வந்தா கொடுத்துட்டு அப்புறம் அடுத்த டைமுக்கு நீங்க வாங்க அம்மாட சொல்லிட்டு.
3: கொஞ்சம் பிரச்சனை வரும்.
4: உங்களோட டைம் போயிட்டது
2: நன்றியா.
4: ஓகேம்மா, ரீட்டாம்மா, சரியம்மா, பாத்துக்கொள்ளுங்க. தர்சி நீங்க நடத்துங்க. ஓகே, நன்றி.
2: Thank you, sister. தர்சி, continue.
5: Okay, thank you. God bless.
6: Hello.
5: Amen. Ashmita, you are here?
6: Yes.
5: Okay, you can start. Okay, thank you. God bless you. After okay. you finish, I will.
6: Okay. हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु इस रात के समय में. प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते. तो अद्भुत है, तो पराक्रमी है, तो विलंब से क्रोध करने वाला है, तू दया का सागर, तू सारे सृष्टि का कर्ता प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू अद्भुत पराक्रमी, विलंब से क्रोध करने वाला, तू दया का सागर, तू आज तक प्रभु हमें चलाया. धन्यवाद करते प्रभु, तेरी महिमा करते प्रभु, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते, कि तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. आज तक तूने हमको चलाया, संभाला, हमारे जीवन में कार्य किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते प्रभु. ओरा बारा शिखरा बारा शंदरा बारा हरे खंदा बारा खुंदो बोरो शिखे बेरे शाह बारा बाबा बा ईरा बारा हरी खंदा बारा खुंदो बोरो शिखेरे बेरे धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते। इस समय प्रभु तूने हमको एक खतित आने के लिए मौका दिया, धन्यवाद करते। हमारे एसपी इंटरनेशनल वड़ा मिनिस्ट्री में सभी लोगों का हम स्वागत करते प्रभु, सभी को तैयार कर प्रभु, हम धन्यवाद करते। हमारे मिनिस्ट्री को बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु, सहायता कर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ईरा बारा रिखारा बारा से खेरे बिरे रे रे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तो महान है। धन्यवाद तेरी करुणा भलाई के लिए धन्यवाद, तू राजाओं का राजा है धन्यवाद, तू प्रभुओं का प्रभु है धन्यवाद। आज तक तूने हमें संभाला सभी को, हम पवित्र आत्मा स्वागत करते, तेरी स्तुति के लिए धन्यवाद करते, तेरी आराधना के लिए धन्यवाद करते। धन्यवाद धन्यवाद, भर दे प्रभु पवित्र आत्मा, मदद कर। धन्यवाद तेरे लहू से हमें ढांप दे, तेरे सामर्थ्य से हमें ढांप दे, तेरे अभिषेक से हमें ढांप दे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, अति सुंदर परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरा बारा शिखरा बारा शंदरा बारा हरी खंदा बारा खुंदो गुरु शिकेरे बिरे बिरे शा बारा बाबा बार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया और शान धन्यवाद धन्यवाद। हो रहा बारा शिकारा बारा बारा शंदरा बारा अपना बोझ यीशु पर डालो,

लो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। वो तुमसे प्यार करता है। अपना

वो तुमसे प्यार करता है। बस प्रभु, तेरा वचन कहते, तूने अब हमारा बोझ हम तुझ पर डाला है प्रभु, हम कभी घबराएंगे नहीं। तू हमारा आदर मान करेगा, तू हमारा आश्चर्य क्रम करेगा प्रभु। हम मांगते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। यस प्रभु।

यस प्रभु, हम तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया लॉर्ड, तू स्तुति के योग्य प्रभु, तू आदर के योग्य, तू ही अल्फा है, तू ही अमेगा है प्रभु, तू असंभव में कुछ भी नहीं प्रभु, सब कुछ संभव है, तेरे लिए सब कुछ संभव है प्रभु। असंभव कुछ भी नहीं, तुझ में असंभव कुछ भी नहीं।

तुझसे है सब कुछ संभव है, सब कुछ तुझसे तुझसे होगा, सब कुछ होगा। असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, तुझसे असंभव कुछ भी नहीं। विधवा के

दे दिया, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं, तुझसे असंभव कुछ भी नहीं।

असंभव कुछ भी नहीं। ईसा की प्रार्थना से रीबा का जो बाजती जुड़वे को जन्म दिया, असंभव कुछ भी नहीं। सुंदर नाम के फाटक में जन्म से लंगड़ा था, चला पड़ा है यीशु के नाम से। सुंदर नामक के फाटक में जन्म से जो लंगड़ा था, चल पड़ा है यीशु के नाम से।

आटा तेल भी कभी कम न होगा, असंभव कुछ भी नहीं, कुछ भी असंभव कुछ भी नहीं। प्रार्थना वेद

उसकी प्रार्थना को सुनी तूने, हन्ना की आंसुओं से उसकी प्रार्थना को तूने सुनी। यस प्रभु, तूने सबकी प्रार्थना सुनी, आज तो हमारी भी प्रार्थना सुनेगा प्रभु। हर बांझ की बातें, बांझ के बेटी के जीवन में तू उनके बांझपन का इलाज करने जा रहे है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं प्रभु, सब कुछ संभव है। तू तो सब कुछ कर सकता है प्रभु, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद।

कोई अपनी कमाई को खाने पाएगा। निश्चय है यह निश्चय है, आशीष और भलाई मार्गों को देखेंगे, धन और दौलत तेरे पीछे हो चलेंगे। जीवन भर तू देखोगे देखोगे, जीवन भर तू देखोगे देखोगे, आशीष और भलाई मार्गों को देखेंगे। घर के भीतर पत्नी फलवंत दाखलता, बालक जलपाई के पौधे हैं, मेजे चारों और नाती पोतों को भी देखने पाओगे। घर के भीतर पत्नी फलवंत दाखलता, बालक जलपाई के पौधे, मेज के चारों और नाती पोतों को भी देखने पाओगे। प्रभु

निचाया है सब निचाया है सब निचाया है। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं यस प्रभु, तेरा धन्यवाद करते यस प्रभु। तू आ प्रभु हमारे दिलों में, हमारे हमें हर बंधन में तू छुड़ाता है, हमें हर गुलामों से तूने मैं आजाद किया प्रभु, धन्यवाद करते धन्यवाद। हालेलुया थैंक यू जीसस।

का पवित्र आत्मा मुझको ये बातें बता, मेरा दिल तू बदल, मेरी नई सृष्टि बना, मुझको तू सिखा कैसे घुटने पे आओ, मुझको तू सिखा कैसे आंसू बहाओ, मुझको तू सिखा कैसे हाथ उठाओ, मुझको तू सिखा कैसे सो

आराधना, यीशु मसीह तुझे आराधना, आराधना हो आराधना, यीशु मसीह तुझे आराधना।

प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। यस प्रभु, तेरे हर पल हम तेरी आराधना करते, सुबह शाम तेरी आराधना करते, तू जीवन दाता देने वाले की हम आराधना करते, हमारे हर मुसीबत में बचाने वाले की हम आराधना करते, क्योंकि तू सबसे ऊंचा है प्रभु, सबसे अच्छा है प्रभु, तेरे जैसा कोई अच्छा पिता नहीं प्रभु। हम तुझ पर विश्वास करते प्रभु, तेरी महिमा करते, एक मन होकर हम तेरे चरणों पे आते, हर एक बांझ की आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते प्रभु। तूने अद्भुत काम किए, बंधन से छुड़ाया, हर बेटी को तूने आशीर्वाद किया, ईसा की प्रार्थना से दीपिका के जीवन में काम आया, एंजल की वाणी सुनने से प्रभु सारा भी गर्भवती हुई। हम प्रार्थना करते हैं आज हमारे हर एक ओ बेटी के लिए जो पीड़ा में है, बंधन में है, कई सालों साल प्रभु हर बेटी रुकी हुई है, उनका इलाज कर प्रभु, असंभव को तो संभव करने वाला परमेश्वर है। आज हम तेरे सामने हर बातें रखते हैं, हर हमारी परिस्थिति, हर वो बेटियों की कहानी तू बदल डाल प्रभु, हर उस कपल के जीवन में कार्य कर जो कितने सालों से पीड़ित थे, दुखी थे, प्रश्न है उनके जीवन में, उनके फ्यूचर के लिए, उनके आने वाले कल के लिए, उनके भविष्य के लिए प्रभु आज हम मांगते, हर एक गर्भा का इलाज तू करेगा प्रभु, और हम विश्वास करते तूने वायदा दिया प्रभु, तूने हर संकट से मैं बचाया प्रभु। आज हम एक मन होकर तेरे सामने रखते बातें प्रभु, क्योंकि तू ही इलाज कर सकता है, किसकी ताकत है हमें आजाद करवाने की ताकत किसके पास है, सिर्फ प्रभु तेरे पास है, तेरे पास ही वो सामर्थ्य है, असंभव को तो संभव करने वाला परमेश्वर है, और आज हम विश्वास करते हैं हमारे परिवार में कोई श्राप है या कोई बंधन है, कि जवानी में हमारे साथ प्रभु कुछ गलत हुआ है, तो आज हम इस समय पश्चाताप करते हैं, हमारे मन की उपशुद्धता का आत्मा मांगते, तेरा दया का हाथ मांग, तू ही हमें संभाल सकता है, तू ही हमारी इस अवस्था को बदल सकता है, हमारे इस परिस्थिति में जो दुख आते हैं हम पे, जो हम निराश हो रहे हैं, ऐसे सारे आदतों को तो बांध के रख प्रभु, और मदद कर प्रभु, हमारे जीवन में कार्य कर, हमारे अवस्था में कार्य कर, हम लगातार तुझसे विनती प्रार्थना कर रहे, हमारी प्रार्थना के ऊपर प्रभु ध्यान दे, हमारे बेटियों के जीवन में कार्य कर। यस प्रभु, आज मांगते हमारी बेटी रूबी के लिए मांगती, लगातार हम उस बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे, कुछ तो कार्य कर प्रभु, आशीर्वाद कर प्रभु, तू सहायता कर, मदद कर, ऐसे प्रार्थना करते हर बंधन को तोड़ दे, बीमार के ऊपर हम तेरी चंगाई की घोषणा करते, कितने लोग कैंसर से पीड़ित थे सभी को तो आजाद कर दे, कोढ़ियों को तो शुद्ध किया, अंधे को देखने लगे दिया, भैरव को सुनने दिया प्रभु, आज हम हर एक बीमारी के ऊपर बांधते, किशोर की माँ को तेरे हाथ में देते, हिला को तेरे हाथ में देते प्रभु, उसकी पापा को तेरे हाथ में देते, उनके जीवन में तो कार्य कर प्रभु, एक भाई है प्रभु पूनम के, देवर का ताबा भी मांगते, उसके शरीर में जो मूवमेंट शुरू हो गया है वो पूरी तरह से होने के लिए मदद कर, वो अपने खुद अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए, उसके शरीर के एक बाजू की भागों में सुनसान पड़े उनमें जीवन की घोषणा करते प्रभु, आज हम विश्वास से प्रार्थना करते उस भाई के जीवन में, उसका ताबा तू ले प्रभु, उस भाई के जीवन में कार्य कर, और वो क्रिश्चियन करके बहन है प्रभु, उसकी भी जीवन में कार्य कर, उसके शरीर के पूरे कैंसर की रत को निकाल दे प्रभु, और पूरी तरह से चंगा होने दे, हर एक की रिपोर्ट बदलने वाला तू परमेश्वर है,
आज हम प्रार्थना करते हैं। कई लोगों को आंखों की बीमारी हो गई है, उस आंखों की बीमारी से आजाद कर। वो आला का एक भाई आला करके है, उसका तबत्तु ले प्रभु, उसके जीवन में कार्य कर। हमारे हर एक बहन भाइयों के जीवन में कार्य कर। कितनी यह बेटी प्रभु आज दुखी है, निराश है, हर बंधन से आजाद कर दे, बीमारी से आजाद कर दे, बांझपन की आत्मा से आजाद कर, पीड़ा होने वाली आत्मा से आजाद कर दे। मैं मरिया के भी जीवन में कार्य मांगती हूँ प्रभु। उस बेटी को एक सपना दिख रहा है प्रभु, एक आदमी हमेशा उसके सपनों में आता है प्रभु। हम नहीं जानते जो सच्ची में प्रभु तेरी ओर से है। तो उस बेटी का इलाज कर, उसकी जरूरत पूरी कर, निराशा से उसको आजाद कर, बंधन से उसको आजाद कर, उसके परिवार में शांति आने दे, बहनों के अंदर प्रेम आने दे। मैं क्रिस्टीन का दावा तेरे हाथ में देती, उस बेटी का दावा तू ले, उसके जीवन में कार्य कर प्रभु। हम प्रार्थना करते उसकी बेटी का इलाज कर दे, उसको पूरी तरह से बदल डाल प्रभु। अपनी माँ का आदर करने के लिए मदद कर, अपने बड़ों का आदर करने के लिए मदद कर। आज के जो बच्चे हैं प्रभु अपनी मनमानी करते, अपने हाथों से खुद जीवन खराब कर देते प्रभु। आज हम मांगते हैं, ऐसे कितनी बेटी का जीवन खराब हो चुका है, कितनी बेटी ने अपना जीवन में सब कुछ खोया है प्रभु। आप उनके लिए विनती करते प्रभु, उनके जीवन में कार्य कर, हमारे देशों में कार्य कर, हमारे परिवार में कार्य कर। निर्मला सिस्टर को भी तेरे हाथ में देती, जैसे वो गांव में जा रही है, अपनी मामा माँ अपनी माँ को मिलने जा रही है प्रभु, उसको मदद कर, आशीर्वाद कर। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, उसकी माँ का दावा तूने ले ली है, उसके जीवन में तू कार्य कर प्रभु, और आशीर्वाद कर, उसको सुखरूप रखना प्रभु। कोई बीमार हर बीमारी से उसको अलग रखना, उसको शांति से भर देना प्रभु, और मजबूत रखना प्रभु। ऐसे में प्रार्थना करती प्रभु, मेरा औली का दावा भी तेरे हाथ में देती हूँ। आज हम लगातार तेरे से प्रार्थना कर रहे प्रभु, हमारा इलाज कर, जिस तरह तूने सारा का इलाज किया, हन्ना का इलाज किया, वैसे हमारा भी इलाज कर प्रभु। असंभव को तो संभव करने वाला परमेश्वर है, और हमारी हर एक कमी घटी को तो पूरा करते हैं। फिलिपिन 4:6 का वचन कहते हैं, सारी चिंता मुझ पर डाल दे, सारा बोझ मुझ पर डाल दे, मत घबराना, मुझे तुझे तेरा ध्यान है, तुझे मेरा ध्यान है प्रभु, तुझे मेरी चिंता है प्रभु, मेरे जीवन की चिंता है तुझे, मेरे वातावरण की चिंता है तुझे, मेरे आने वाले कल की चिंता है तुझे प्रभु। हमारी हर चिंता तूने ले ली है प्रभु, हर डर निकाल दिया है प्रभु। तेरी हम घोषणा करते इस समय, तूने हमें पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया, हमारे हर एक पीड़ा को तूने ले लिया, हमें आजाद किया प्रभु, बीमारी से, पापों से, हर बंधन से हमें आजाद किया तूने। हम तेरा धन्यवाद करते, तेरा आशीर्वाद मांगते प्रभु, तू सहायता कर, मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांग ले। हमारे हर एक बहन भाइयों को भी ताबा तेरे हाथ में, मेरी बहन पूनम का ताबा, उसके जीवन में कार्य कर, उसके पति के होने वाले पति के जीवन में कार्य कर, उसकी माँ, उसका भाई जो टीबी से पीड़ित है, उसको तूने आजाद किया है, वो भरा भला चंगा हो चुका है, आने वाले जीवन में वो सही रास्ते पे चलेगा, उसके हर बंधन को आजाद कर दे, हर तेरे विरुद्ध होने वाले हर एक बातों को उसे दूर कर दे प्रभु। अच्छे से काम करके अपना जीवन सही तरीके से चलने के लिए उसको मदद कर। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, सहायता कर, मदद कर। यीशु मसीह नासिक के नाम से मांगते, आमीन आमीन। धन्यवाद। इस समय आइए, हम वचन की तरफ जाते। आज का हमारा वचन है नेहेमिया चैप्टर, उसका पहला अध्याय से हम पढ़ेंगे 7वां वचन से। धन्यवाद प्रभु, आज के हमारे वचन से तुम्हें मदद कर प्रभु, और तेरे लहू से हमें ढांप दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया।
थैंक यू जीसस। इधर प्रभु नेमिया से बात कर रहे हैं। हम 4 से लेकर 7 वचन तक पढ़ेंगे। कुछ बातें नेहमिया से प्रभु बात कर रहे हैं। वो भी चिंता था, वो भी दुखी था अपने देश के लिए, रो रहा था, क्योंकि नेहमिया इसीलिए रो रहा था कि जरूशलम के सारे दीवारें टूट चुकी थी। उसका काम करने का था, फाटक जले हुए थे, शरपान टूट खोई थी, उसकी उस घर की दरदूज पड़ी गई थी, इसलिए नेहमिया रो रहा था। और वो नेहमिया यरूशलेम लौटना चाहता था, अपने जगह को अच्छा करने, अपने देश को अच्छा करने। अभी इधर हम पढ़ते, ये बातें सुनते ही बैठ कर रोने लगा। कितने दिन तक वो विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करा। कितने दिन तक नेहमिया रोता था, प्रार्थना करता था, उपवास करता था और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, ये महान और भययोग्य ईश्वर है। तू अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता है। देखो, इधर हम देखें 4वां वचन में वो रो रहा था, हर अपनी परिस्थिति के लिए रो रहा था। आज हम और आप भी, हमारी भी ऐसी कुछ परिस्थिति है, किसी की बीमारी की परिस्थिति है, किसी के घर में बच्चे नहीं हो रहे इसलिए परिस्थिति है। आज कहीं बेटियां बांसी दबी हुई है, उनके घरों में कितने सालों सालों तक बच्चे नहीं है, कहीं बेटियों के घर में शांति नहीं है, पति खराब अवस्था में चल रहा है। ऐसी अवस्था में आज इधर नेहमिया बात कर नेहमिया को परमेश्वर बात नेहमिया से बात कर रहा है। उसने उपवास किया। आज हम सभी ने भी कई बार हमारे परिस्थितियों के लिए उपवास किया होगा, प्रार्थना की है, कितने कितने सालों तक प्रार्थना कर रहे, लेकिन फिर भी उत्तर नहीं है। इधर परमेश्वर देखो क्या कह रहा है 5वां में, ए स्वर्ग। तभी एलिया नेहमिया प्रार्थना करता और कह रहा है, ए स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, ए महान, और तू कैसा है, भययोग्य ईश्वर है तू, जो अपने प्रेम रखने वाले की और आज्ञा मानने वाले के विषय में तू वाचा बांध रहा है। परमेश्वर इधर ऐसी प्रार्थना कर रहे, प्रभु तू परम परमेश्वर है, तू भययोग्य ईश्वर है, तू प्रेम रखने वाले के ऊपर और आज्ञा मानने वाले के ऊपर तो अपनी वाचा बांधता है। आपके और मेरे ऊपर परमेश्वर की वाचा बांधी हुई है, क्योंकि वो हमारा भययोग्य ईश्वर है और उसकी वो उन पर करुणा करता है, जो उसका वाचा का पालन करता है, जो उसका भय मानता है, जो उस प्रेम करने वाले का भय मानता है, उसके ऊपर प्रभु अपनी करुणा करता है। और इसीलिए परमेश्वर इसीलिए यिर्मयाह प्रार्थना करो कह रहे, प्रभु मेरी प्रार्थना के ऊपर कान लगा, आंखें खोल रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इसराइलों के लिए दिन रात करता हूँ। आज हम कह सकते हैं, आज प्रभु हम रात दिन सुबह शाम तेरे पास आकर प्रार्थना जो हमारे लोगों के लिए हम कर रहे उससे तो सुन ले। मैं इसराइली पापों को हम लोगों के ने विरुद्ध किए हैं, हम मान लेते, हम हमारे पापों को मानते, हमारे अधर्मों को हम मानते, हमने तेरे विरुद्ध जो जो काम बचपन से आज तक किए उसको हम मानते प्रभु। ऐसा यिर्मयाह प्रार्थना कर रहा है, नहीं मैं
पर मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किए। हम लोगों ने अपने परिवार के विरुद्ध, अपने माता पिता के विरुद्ध, हमारे देश के विरुद्ध, हमारे प्रभु के विरुद्ध जो भी हमने पाप किए, हमने बहुत, इधर यिर्मयाह फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, हमने तो तेरे सामने बहुत बुराई की, जो आज्ञाएं विधवाएं और नियमों को तूने अपने दास मूसा को दी थी उसको हमने नहीं माना। मूसा के द्वारा जो हमें आज्ञा दी गई है उसे हम लोगों ने नहीं माना है, कई मानी है कई नहीं मानी है, हमने परमेश्वर की आज्ञा का अनादर किया है। तब इतना यिर्मयाह प्रार्थना करे उठे, हे यह वचन की सुधि ले, तूने अपने दास मूसा से कहा था यदि तुम लोग विश्वास योग्य विश्वासघात करोगे तो तुमको दे देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। प्रभु कह रहा है साबित है, तुमने विश्वासघात करोगे तो मैं भी तुम्हें क्या, तुम्हारे देश को, तुम्हारे लोगों को मैं क्या करूंगा, तितर बितर कर डालूंगा। आज कहीं ना कहीं हम सब तितर बितर हो चुके, परिवार के द्वारा, देश के द्वारा, बीमारी के द्वारा, परेशानी के द्वारा, हम क्या हुए, तितर बितर हुए। तो आज परमेश्वर नेहमिया प्रार्थना कर रहा है अपने इसराइल देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, हर समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहा है, उपवास और प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, विनती कर रहा है, प्रभु तेरे तेरे विरुद्ध हुए हुए पापों का हम अंगीकार करते और हमें क्षमा कर और हमें मदद कर। दूसरा एक वचन हम पढ़ेंगे उसमें ही, जेरेमिया चैप्टर, उसके बाद जेरेमिया भी 33 में कुछ बातें प्रभु जेरेमी के द्वारे हमें वो बता रहे हैं। जेरेमी चैप्टर 33 वर्ड्स 11। हालेलुया प्रभु। जेरेमिया 33 चैप्टर 33:11, 33 चैप्टर 11 का वचन हम देखेंगे। हालेलुया प्रभु, सच्ची तेरा धन्यवाद।

नहीं, उसमें हम 11वां वचन पढ़ते हैं। देख, हम 33 में पहला तीसरा वचन पढ़ते। देखो, इधर प्रभु यिर्मयाह से क्या बोल रहे, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तूने अभी नहीं समझा। इधर यिर्मयाह को भी प्रभु कह रहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी को कठिन कठिन बातों बताऊंगा जिन्हें तूने अभी समझा नहीं है। और दूसरी बात इधर बता रहा है, उसमें हम 8 वचन पढ़ते, उसमें कहते हैं, मैं उनके सारे अधर्मों और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो जिन्होंने मेरे विरुद्ध की है, जिन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए उन सबको मैं क्षमा करूंगा, क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे जो उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो उनसे करूंगा डरेंगे, थरथराएंगे, पृथ्वी के उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष स्तुति की शोभा के कारण हो जाएंगे। आमीन। देखो यार, प्रभु कितनी अच्छी बात हमें बता रहे हैं। पहले ही प्रभु ने नहेमिया को बोला, प्रार्थना कर रहा है वो रोककर इसराइलियों के लिए। यिर्मयाह भी, यिर्मयाह को प्रभु क्या बोला, तेरी अवस्था के लिए तू प्रार्थना कर, मैं तू प्रार्थना करेगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। इतना ही नहीं, इतना भी बोल रहे थे सब, मैं उनके सभी लोगों के सारे अधर्मों के पापों को क्षमा शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए, जितने अधर्म अपराध काम प्रभु के विरुद्ध किए गए उन सबको मैं क्या करूंगा, क्षमा करूंगा, क्षमा करूंगा करके कह रहे प्रभु। ऐसा हमारा परमेश्वर है, वो हमें क्षमा करना चाहता है, वो हमें आजाद करना चाहता है, वो हमें बंधन में कभी नहीं रखना चाहता है। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू अद्भुत है प्रभु, तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, बड़े बड़े काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। आज प्रभु हमें यही बात समझाना चाहते हैं, वो हमें कठिन कठिन बातों का, यिर्मयाह को क्या बोल रहा है वो, कठिन कठिन बातों का मैं तुझे दर्शन दूंगा, तुम मुझसे प्रार्थना कर तब मैं तुझे कठिन कठिन बातों का दर्शन दूंगा। ऐसा प्रभु कह रहा है, आज यिर्मयाह से बातें कर रहा है, आपसे और हमसे बातें कर रहा है प्रभु, हमें वो कठिन कठिन बातें बताना चाहते हैं, कठिन कठिन बातों को समझाना चाहते हैं। ऐसा आज हमारा परमेश्वर है, और दूसरी बात प्रभु इधर क्या कहते हैं, यिर्मयाह 33 में पहला तीसरा कठिन बातों को बताना चाहते हैं, कठिन प्रार्थना तुम करो तब मैं तुम्हें कठिन सुनूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना, कठिन कठिन बातों को भी समझाऊंगा, और फिर बोलते हैं मैं तुम्हारे पापों को भी शुद्ध करूंगा, क्षमा भी करूंगा और इलाज भी करूंगा। देखो 6वां वचन में हम पढ़ते तो क्या बोलते, देख से इलाज करके मैं उसके निवासी को चंगा भी करूंगा,
इलाज करके मैं उनको चंगा भी करूंगा। चंगा भी करूंगा, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। फिर 8 में बोलता है, अधर्मों को क्षमा करूंगा। 8 में कह रहा है, अधर्मों को क्षमा करूंगा। देखो, 3 बातें प्रभु यिर्मयाह से बातें करे। पहला कठिन रास्ता, कठिन कठिन बातों को सरल करेगा। कभी प्रार्थना करने से, प्रार्थना करोगे तो प्रभु सुनना सुनेगा हमारी प्रार्थना। और कठिन बातों भी बताएगा वो, जो बातें अभी तक हमने समझी नहीं है वो बातें हमें प्रभु बताना चाहता है। और इधर तीसरी बात प्रभु हमें यहाँ तीसरे वचन से ऐसी बातें कह रहा है प्रभु, जब हम पढ़ते हैं उसमें 11वां वचन,

सदा है, सदा की। और यहाँ के भवन में धन्यवाद बलि लाने वाले का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं देश की दशा पहले के समान चोक तक कर दूंगा, यह की हा वचन है। आनंद से भरना चाहता है, दुल्हन दुल्हन का भी शब्द सुनाएंगे, बाज बाजे का शब्द सुनाएंगे, आनंद तार वाले बाजे भी बजाते का सुना सुनेंगे। आप जो चुप हो गया था वो फिर प्रभु सारा खोलने वाला परमेश्वर खोल रहा है सब कुछ। उसी में भजन संहिता 46 का पहला कहते हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर है, मैं तुम्हारे कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर क्या कमी घटी को परम परमेश्वर, वो हमारा चरवा है, वो हमारा परम प्रधान परमेश्वर, छत्र छाया में मैं लेकर बिठाने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है, हमसे बातें कर रहे हो। यस, बातें कर रहे हैं। वो हमारा अच्छा पिता है, उसका ग्रेस हमारे ऊपर ऑलरेडी प्रभु ने उंडेल दिया हमारे ऊपर। ऐसा है परमेश्वर, हमारे आज कौन सी भी परिस्थिति कठिन भी हो तो भी परमेश्वर दस्ते में बाहर निकालेगा। हमें सिर्फ विश्वास करने, मूसा ने दी हुई आज्ञा का हमें पालन करने, हर उस आज्ञा का पालन करने और प्रभु के पीछे हो लेना। आइए मां के बंद करते, धन्यवाद प्रभु आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते। आज हमने 3 बातें देखी, उधर इतने ही में अपने लोगों के लिए उपवास प्रार्थना करके प्रभु से विनती और प्रार्थना कर रहा है, फिर प्रभु यिर्मयाह के दरमियान यिर्मयाह को बोल रहा है प्रार्थना कर तो मैं सुनूंगा और तेरे कठिन कठिन बातों को मैं बताऊंगा, तेरे पापों को मैं क्षमा करूंगा, मैं तुझे चंग बीमारी से आजाद करूंगा, चंगा करूंगा और फिर से मैं नया बनूंगा। और तुम मेरा आनंद जब आएगा तब दुल्हन दुल्हे नाचेंगे गाएंगे तालियां बजाएंगे, हर जगह में शोर मचाए मच जाएगा। ऐसा आज तो परमेश्वर कह रहा है, प्रभु में मदद कर, तेरे अनुग्रह में तेरे छत्र छाया में मैं बांध के रख, हमारे परिस्थितियों को बदल, हमारे हर हालातों को बदल प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते, इस समय तूने दिया धन्यवाद, तेरी करुणा हमारे पर बरसाई धन्यवाद, तेरी शांति हमारे पर बनी रही धन्यवाद। हम मांगते राजा इस सुंदर समय के लिए, सुंदर उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते, तेरा राज हमारे जीवन में आने के लिए मदद कर, तेरी महिमा होने के लिए मदद कर, ऐसी में प्रार्थना करते प्रभु, सहायता कर, मदद कर, तेरे लहू से में ढाप दे, तेरे सामर्थ से में ढाप दे, तेरे अभिषेक से हमें ढाप दे प्रभु। ऐसे में प्रार्थना करते प्रभु, तेरे अनुग्रह की शांति, तेरी दया की शांति हमारे सबके ऊपर बने रहने के लिए मदद कर। आज का जो वचन प्रभु तूने हमको दिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे अनुग्रह तेरी शांति हमारे लोगों के ऊपर, जिस तरह नेहमिया ने प्रार्थना करते हमारे लोग अपने लोगों के ऊपर उपवास प्रार्थना करके प्रभु तेरे करीब लेकर आए, तूने कहा मैं सुनूंगा तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे अधर्म को क्षमा करूंगा और तुम्हें मैं आजाद करूंगा, बीमारी से चंगा करूंगा, तुम्हें अपने आनंद से भरूंगा। प्रभु आज हम मांगते हमारे सभी बहन भाइयों को तेरे हाथ में दे।

करते, हर एक की प्रार्थना को तो सुन प्रभु, और हम जो बातें अभी तक हमने समझी नहीं है ना, वो समझने के लिए हमारी मदद कर, हम मध्यस्थी करते, तेरे नाम की गुणगान गाते, तेरे नाम को चर्चा करते, हमारे लोगों को आशीर्वादित कर, हमारे बहन भाइयों को तो आशीर्वादित कर, हमारा देश का ताबा, हमारी एरिया का ताबा, हमारे कंट्री का ताबा प्रभु, मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, सारी बातें सही होने के लिए मदद कर, ऐसे हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से मांगते। निर्मला को भी तेरे हाथ में देती, मंजू माँ का ताबा, उनकी बेटी का ताबा, उनकी मिनिस्ट्री का ताबा, और आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद कर, सबको तैयार कर प्रभु, सभी मनवल भाई का ताबा और अन्य हमारे भाई बहन सिकिया का ताबा, सभी को तेरे हाथ में देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर निर्मला।